पुराने जमाने में नरकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, वो लोगों को बहुत सताता था, इसीलिए श्री कृष्ण ने सत्य मामा के साथ मिलकर उसे मार डाला।